0: my point. She's
1: Your
0: wasting
1: lecturer,
0: time there.
1: Mr. Bhopanai, Gaurav Sawant is the anchor. Let him moderate the debate. Gaurav, my limited point is this. Do you know who brought in this provision of having booth-level agents in 2008? It was the Congress party because it said that BLOs are either
2: Why
1: government
2: don't you go back to 1950?
1: Or
2: why 2008? Go back to 1950.
1: I want to ask.
2: 1940, 1930.
3: Okay, give me a moment. Give me a moment. I'm going to stay on the substantive issue and I quickly want to bring in Rajat Sethi on this broadcast because Rajat Sethi, Congress says there is no response on very critical issues by the EC. The response is either too lame, too little or too late. There is no clarity. The Congress says on Form 6, changing it was illegal. On objection raised by ECs on 14 occasion in 10 months, no clarity on that. Or 97 odd names cut off in Goa, only 81 may have been added. But why did the problem come in the first place? That shows all is not well in the EC.
4: So, Gaurav, again, going to the substantive points, we need to understand that the Constitution itself and several Supreme Court judgments have laid the enormous powers that is being given to the Election Commission through the Article 324. Article 324 is called a reservoir of power. That's the amount of power and the residual power that resides with the Election Commission. This topic of residual power was also brought in when this Bihar SIR was tabled before the Supreme Court. And there has been no adverse remarks that was made by the Supreme Court on this specific issue. The form per se has not been changed. There is a declaration which has been attached because there is an SIR process, which is a live process, in order to ensure that there are no leakages in the system. This declaration was slapped alongside the main Form 6. So there is no substantive changes. And also keep in mind that philosophically, from the constitutional provisions, enormous reservoir of powers remain in Article 324. And this has been well established in the MS Gill versus Union of India versus...
3: Yes, I want you to come in because... Okay, because the specific point, the Election Commission has also, Adil Singh Bhopanai clarified on this point 6. The EC says there is no change to Form 6. The requirement relating to the linkage with parents or grandparents was introduced as an additional declaration along with the existing approved form. Form 6, the ECI's position is that attaching a separate declaration does not amount to altering the statutory form. Now, wear your legal hat, sir. Does this pass legal scrutiny?
2: Gaurav, you can verify this after this debate is over. Now, please understand, where does Form 6 derive its legal sanctity? Form 6 derives its legal sanctity from the Registration of Electors Rules 1960. It is a statutory form. In other words, it is a pro forma.
3: Sanjeev Verma, I'll come to you to respond. Let him complete his point, ma'am. I'm coming to you. Let him respond. Go on, sir.
2: Form 6 is a statutory pro forma form, number one. Number two, even the Supreme Court at the time of the Bihar elections, at the time of the Bengal elections, said, please do not go beyond the statutory framework. Point number two. Point number three, Mr. Sandhu, and as revealed by the Indian Express, says, raises an objection that when you seek an amendment or an additional declaration, puts a burdensome or an onerous obligation on an elector to disclose whether his parent or his grandparent was part of the earlier SIR or not.
3: Okay.
2: You need to amend the rules, have it amended by the government, and then thereafter it has to be
3: but
2: parliamentary.
3: Did he object in a meeting? Do we need more clarity that whether this objection was subsequently, you know, was it his objection alone? Was it 2:1? Was it 1:2? All of that, we need more clarity. Sanjeev Verma wants to come in because opposition Sanjeev Verma is clearly not satisfied with the clarification of the EC. Should the CEC and the ECs now hold a press conference and clarify these issues, ma'am?
2: Can I make a 30-second interjection before you go?
3: After Sanjeev Verma, Sanjeev Verma respond.
1: I don't wish to be heckled. Because when I'm speaking, I'm heckled and I don't think that is fair, Gaurav. Please,
3: on,
1: I need my time. And I need 2 minutes.
2: 40, that's
1: all. I do
3: okay,
1: not wish
3: only,
1: to
3: only Sanjeev Verma.
1: Gaurav, this is unfair. Either you call the BJP and give us time.
3: Yes,
1: or you tell
3: only
1: us
3: Sanjeev Verma.
1: Thank you.
3: Go on, ma'am.
1: On the 27th of May 2026, the Supreme Court clearly said no alteration of Form 6 has happened. But if a declaration or an annexure is added, the CEC is well within his jurisdiction to do that. Point number one. So Gyanesh Kumar has not violated any role or rule and has not overreached his brief. The second point is this. People like Rahul Gandhi, they first said that the EVMs are faulty. The Supreme Court told Rahul Gandhi, EVMs are not faulty. Then Rahul Gandhi said, Om Birla, the Speaker of Lok Sabha, is being unfair. They moved a no-confidence motion. Om Birla came out unscathed and Rahul Gandhi had a nice big fat omelette on his face. They even passed a no-confidence motion in August 2023 against Prime Minister Modi's government ahead of Lok Sabha 2024. Again, that no-confidence motion was defeated on the floor of the House. So what am I trying to say? I'm trying to tell you that each time Rahul Gandhi loses an election, he starts shouting, vote chori. Tell me, Gaurav, after winning the KLM election in 2026, Rahul Gandhi said, sab changa si. But after the BJP won Bengal,
3: Now it remains to be seen because this war is all set to escalate. We'll be tracking that story. I want to thank all our guests because there's another big story I'm moving to. It's in Ujjain where clashes erupted over the demolition of the portion of the Shahi Masjid there. Now, this portion of the Shahi Masjid was being removed as part of a road widening project ahead of the 2028 Simhast Mahakumbh pilgrimage. So members of a certain community watched those images. They gathered outside the mosque and then as authorities prepared to carry out the task. In fact, the Sheher Qazi and elders of the community were themselves doing this. The mob began pelting stones and clashing with the police. The police had to use tear gas shells to disperse the crowd. But there's another aspect for it. The crowd put women in burqas in front and then targeted the police. And then they used social media to spread rumors. Much more on this big story. First, this report.
0: Tensions gripped Ujjain as members of the Muslim community gathered in large numbers to oppose the demolition of a portion of the Shahi Masjid. The demolition is part of a road widening project as a portion of the mosque falls in the way. The 9.8 crore road widening project is aimed at easing traffic in Ujjain for the Simhasta Kumbh pilgrimage in 2028. But as the authorities prepared for the removal of the affected portion of the Shahi Masjid on Monday, a mob collected outside the premises. What followed was stone pelting, clashes with the police, and the use of tear gas to disperse the mob. More than 2,000 police personnel were deployed. Barricades were placed around the mosque and at least 10 persons detained by the police.
5: ये एकदम एपिसेंटर है इस पूरे वायलेंस का ये सामने आप देखिए हम आपको बैरिकेड से दूसरी तरफ दिखाते हैं ये वो शाही मॉस्क है जिसके हिस्से को हटाने को लेकर के ये पूरा बवाल शुरू हुआ सामने ही वो आप देख रहे हैं और उसके ठीक पास की ये जगह है जहां पे इस वक्त अगर आप देखें तो पूरी तरीके से पुलिस ने इस इलाके को अपने घेरे में ले लिया है और इसी मॉस्क का हिस्सा जो है वो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट के तहत हटना है और इस तरफ अगर आप देखें तो लगातार आपको ये तमाम पुलिस वाले दिख जाएंगे पुलिस ने बैरिकेड लगा के अब लोगों को यहां से पूरी तरीके से खदेड़ दिया यहां पे किसी के भी आने के फिलहाल मनाही है
0: अथॉरिटीज हैव पॉइंटेड आउट दैट द डेमोलिशन वर्क वाज इनिशिएटेड बाय द मॉस्क कमिटी इटसेल्फ बट सर्टेन मिसक्रिएंट्स अटेम्प्टेड टू क्रिएट डिस्टरबेंस
6: कृपया करके कोई भी गलत जानकारी भ्रामक जानकारी ना फैलाएं उज्जैन में जो भी कार्य हो रहे हैं सभी लोगों के सभी समाजजनों के सभी व्यक्ति विशेष सभी के द्वारा स्वतः ही स्वेच्छा से एक सद्भाव के साथ जो है विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है उसी क्रम में ये कार्य भी इनके द्वारा स्वयं जो है किया जा रहा है
7: प्रत्येक गली को प्रत्येक संवेदनशील मोहल्ले को हमारे द्वारा मैप किया गया है वहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया है प्रत्येक गली में सीसीटीवी कैमराज और ड्रोन्स डिप्लॉय किए गए हैं जिनके द्वारा लगातार पूरी रिकॉर्डिंग की जा रही कंट्रोल रूम के द्वारा इसकी स्थिति की मॉनिटरिंग की जा रही जितने लोग इसमें इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं उन सभी को चिन्हित किया जाएगा उनके ऊपर पृथक से एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और पैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी
0: While one section of the Muslim community started removing the affected part of the mosque themselves, another group objected to the voluntary demolition. Ujjain city Qazi has appealed to members of the Muslim community to maintain peace and not to pay heed to rumors, stressing that the issue had already been resolved.
8: Masjid ka masla raat ko hi hal ho gaya tha aur aisi koi baat nahi jiske piche hum aa jaye. बस जिस बात के लिए कमिटमेंट हुआ है वो काम पूरा होना है और वो लोग अपने काम को कर रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का बिल्कुल ख्याल न करें और जिस जो भी अफवाहें उस पर ध्यान न दें और अफवाहों की वजह से बाहर न निकले घरों से अपने.
0: The Madhya Pradesh High Court has dismissed an appeal challenging the proposed demolition, taking note of an agreement reached between the mosque management and the municipal corporation. As part of this road widening drive, a portion of Chief Minister Mohan Yadav's ancestral home that was obstructing the project has also been demolished. With Ravish Pal Singh, Bureau Report, India Today.
3: And joining me on the special broadcast is Maulana Sajid Rashidi. He's the president of All India Imam Association. Also with me is Dr. Vikram Singh, former Director General of the Uttar Pradesh Police, someone who's dealt with situations like this in the past. Maulana Sahab, jab 10 मंदिर वहां से हटाए गए या अतिक्रमण हटाया गया तब कोई विवाद नहीं हुआ. जब बोरा मुसलमानों की मस्जिद वहां से हटाई गई कोई विवाद नहीं हुआ. बस शाही मस्जिद का अगर गैर कानूनी हिस्सा या अतिक्रमण हटाना है और शहर काजी की जानकारी थी फिर बवाल हो गया. किस रूप में आप इसे देखते हैं? कौन है ये लोग, क्यों कर रहे हैं ये?
9: देखिए हमें इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है. दो दिन से वहां गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, रात को मीटिंग हुई प्रशासन के साथ में शहर काजी और मस्जिद कमेटी की. रात को 2:30 बजे एक फैसला हो गया और कह दिया गया कि भाई वो जो 3-3.5 फुट का छज्जा है उसको हम खुद तोड़ लेंगे. बात तय हो गई, सब लोग अपने घर चले गए. मेरा भी सवाल वही है जो आप सवाल कर रहे हैं. ये सुबह जो लोग आए ये कौन थे, कहां से आए, कौन लेकर आया, पत्थरबाजी क्यों हुई, ये मेरा भी सवाल है. और मेरा ये भी सवाल है, आपने खुद बोला कि मंदिर भी हटे, वोरा कमेटी की मस्जिद भी हटी, कोई बवाल नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ मस्जिद पर बवाल क्यों हुआ? मेरा भी
3: और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आना चाहिए.
9: yes,
3: क्योंकि
9: yes,
3: कोई कानून से ऊपर तो अपने को नहीं समझ सकता. धर्म विशेष के लोग कानून से ऊपर तो नहीं समझ सकते अपने को.
9: बिल्कुल, आप सुनिए, आप सुनिए.
3: और लेट मी गेट डॉक्टर विक्रम सिंह टू रिस्पॉन्ड टू दिस. डॉक्टर विक्रम सिंह, इस मुद्दे पर वी नीड क्लैरिटी ऑन दिस सब्जेक्ट सर, फॉर द सिंपल रीजन if 10 temples can be removed for the sehast for the road widening for the Mahakumbh in 2028 and there is no problem with that, if a Bohram Muslim masjid can be removed, no problem, why is it that only when Shahi masjid is being tackled and as per law then women are put in front and violence starts?
10: Good evening, Gaurav ji. This is on very much on expected lines. You would see that this is a pattern in the sense that first you agreed to the proposal and Khaliqur Rahman Sahab, the Shahar Qazi, also was privy to the understanding that happened late in the evening. But yes, it was just a ruse perhaps to buy time. And when the actual demolition did start, a few sane-minded people of the community, they started the demolition of the part of the Shahi Masjid on their own. And I salute their sense of judgment and propriety. But there were mischief makers also who not only assaulted women police officers, and also Prabha Ji, who was the inspector of the crime branch, also got seriously injured. And also there were others who were seriously injured. Now, this is totally on expected lines. Wherever you would see such problems, their women would be in front, whether it is the anti-CAA agitation or others. And Maulana Rashidi, I wonder if he's listening to me or not. But the fact of the matter is that he put more questions to you than he answered. And the question, I would have been very satisfied. Maulana sahab, aadab arz hai. Aapki itla ke liye meri guzarish ye hai ki main ye chahta tha ki kam se kam is baar to aap roshni dete ki jin logon ne kiya hai inki mazammat, wo dehshatgard hai, unke khilaf police karwai kare. Jab ek dafa Khaliqur Rahman sahab ki sarparasti mein ek faisla ho gaya tha.
9: Mujhe Gaurav bhai ne zyada bolne nahi diya, main yahi kehne wala tha.
3: बिल्कुल एक एक मजम्मत आई
9: मीन
3: बट मजम्मत आप करें ना करें कानून अपनी कार्रवाई करेगा और कानून नोबडी शुड ऑब्स्ट्रक्ट लॉ फ्रॉम टेकिंग इट्स ओन कोर्स.
9: गौरव भाई सुनिए,
3: पुलिस की महिलाएं घायल हुई हैं और ये जैसा डॉक्टर विक्रम सिंह कह रहे थे एक तरह से अभी एक प्लान बन गया है कि पहले बुरका में महिलाओं को आगे करेंगे और फिर पीछे से पथराव करेंगे. 2020 में देखा, बाद में एक और राज्य में देखा, वहां पर तो खैर पुलिस ने काफी कार्रवाई की और अब मध्य प्रदेश में ये देख रहे हैं.
9: गौरव भाई मैंने विक्रम सिंह जी को भी सुना है और हम अक्सर बैठते हैं.
3: जी जी जी.
9: मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, मैंने भी वही सवाल उठाया. मैं कहना चाहता हूँ ये जो लोग थे इनको ऐसी सजा मिले, इनको ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई पैसे लेके तैयार ना हो पत्थर मारने के लिए. ऐसी सजा मिलनी चाहिए.
3: आप कह रहे हैं पैसे लेके पत्थर मारे इन्होंने पुलिस पर,
9: इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए. अब मेरी इस बात को ध्यान दीजिए कि इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई पैसे लेके पत्थर मारने को तैयार ना हो. मुसलमान पत्थर नहीं मारता गौरव भाई.
10: मौलाना साहब आपने बजा फरमाया, आपकी बात काबिले एहतराम है. इसमें देखिए हम हिंदू मुस्लिम ना करें, जिसने पत्थर चलाया ला कानूनी फैलाई चाहे कोई भी हो और पुलिस के नजरिए में हिंदू मुसलमान नहीं दहशतगर्द और ला कानूनी फैलाते उनके ऊपर कार्रवाई करते.
9: दूसरे एक चीज गौरव भाई एक चीज को समझिए आप
3: जी.
9: ये महाकुंभ पहली दफा तो नहीं हो रहा है
3: जी.
9: देश को आजाद हुए 80 साल हो गए. ये आपकी आस्था है, आपकी आस्था के नाम पर हमारी सरकारें जो है वो धर्मनिरपेक्ष हैं. हमारी सरकारें महाकुंभ मेला बनाने के लिए, उसको चलाने के लिए नहीं है, मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं है. ये सड़क चौड़ीकरण का जो काम हो रहा है, क्या सरकारों के यही काम रह गए? भोपाल में दुनिया का सबसे बड़ा तबलीगी इज्तिमा होता है, कभी सरकार ने कोई अनुदान दिया उसमें? कभी सरकार ने कोई सड़क बनाई सिवाय
3: इसके? जमाना वो भी था मौलाना साहब जब प्रधानमंत्री के घर में इफ्तार हुआ करते थे.
9: नहीं गलत तो, गौरव भाई
3: हाँ, जब बड़े बड़े मंत्रियों के घर इफ्तार हुआ करते थे.
9: अरे उस समय भी हम धर्म निरपेक्ष देश क्या लेने देना इफ्तार से विकास.
3: हम तो बस आपसे ये कह रहे हैं कि धर्म विशेष के लिए कर दिया तो सेकुलर.
9: अच्छा मुझे बताइए,
3: सड़क बना
9: बताइए
3: तो आरोप लग गए.
9: नहीं मुझे बताइए विक्रम सिंह जी,
3: डॉक्टर विक्रम सिंह आपको
9: विक्रम सिंह जी मैंने 30 सेकंड बोल जाऊं विक्रम सिंह जी की इजाजत
3: जी.
9: मैं कह रहा हूं ये इफ्तार पार्टी से कौन सा विकास होता है? महाकुंभ मेले लगाने से कौन सा विकास होता है?
3: सरकारी खर्चे पर क्यों होता था?
9: महाकुंभ मेले से कौन सा विकास होता है मुझे बताइए?
3: महाकुंभ मेले से करोड़ों रुपए की आय होती है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको दिखाया आपको, अरब करोड़ों रुपए की आय होती है.
9: आस्था है आपकी उसमें, आप बोलेंगे उसमें, ये मजबूरी है आपकी.
3: तथ्यों के मेरी मजबूरी नहीं है,
9: मजबूरी नहीं है,
3: मेरी मजबूरी नहीं है, तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ. डॉक्टर विक्रम सिंह आपको उत्तर देना चाहते, डॉक्टर विक्रम
10: सिंह सेकंड मुझे भी, आपके 30 सेकंड पूरे 5 सेकंड मुझे भी दे दे, कोई लंबी जो तकरीर मुझे देनी है. मैं आपसे सीखने आया हूँ मौलाना. हर थाने में एक त्यौहार रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में इंदिराज होता है. कोई भी तबलीगी जमात हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, दशहरा, वहां पर क्या इंतजाम होता, क्या पुलिस लगती है और जो जुलूस जाता है उसमें कोई रुकावट है कि नहीं है? रुकावट हर साल नई होती है और जो नई रुकावटें आती है उसको दूर करना पुलिस और इंतजामिया का काम है. ये हर साल होता है, हर त्यौहार के लिए होता है. आप कहते तबलीगी जमात के लिए नहीं होता, मैं मानने को तैयार नहीं हूं. हर जगह जहां एक मजमा होता है, जहां हुजूम होता है, पुलिस और इंतजामिया उसका पूरा इंतजाम करती है और फिर खैरियत के साथ उनको मजमा जलसा होने के बाद उनको रुख्सत करती है. तो मौलाना हम तो आपसे सीखने आए थे, आपकी सरपरस्ती आपको फरमानी चाहिए. अब आप मतलब सरपरस्ती क्यों?
9: आप मुझे जानते हैं, मैं सच बोल देता हूं. आप मुझे जानते
3: नहीं, जरूर बोलिए, लेकिन आप उनसे भी सच बोलिए कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, अदालत के पास जाएंगे, सिंगल जज के पास गए, डिविजन बेंच के पास गए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन पथराव थोड़ी कर सकते हैं. और वो भी महिलाओं को, बुरके में महिलाओं को आगे कर दिया, पीछे से पत्थरबाजी शुरू कर दी और यहाँ पुलिस वाली महिलाएं घायल हो रही हैं.
9: सुनिए गौरव भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में बाबरी मस्जिद का फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने चार बातें कही थी मुख्य रूप से, आप भी जानते हैं. मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना, 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई.
3: वो एक अलग डिबेट है, आज की डिबेट नहीं. तो अब आप क्या कह रहे हैं?
9: आप लोग कैसे घुमाते हैं बातों को? ये फिर
3: मैं तो इस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ.
9: हम क्या करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाके? सुप्रीम कोर्ट कहाँ जाएंगे? हमारी
3: सड़कों पर पत्थर मारेंगे सर.
9: तो सहारनपुर में क्या हुआ? सहारनपुर में बिना किसी ऑर्डर के मस्जिद को तोड़ दिया. क्या करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जाके? क्या करेंगे हाईकोर्ट जाके?
10: सहारनपुर में
3: बात कर रहे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर विक्रम सिंह आपको उत्तर देना चाहते हैं
10: मौलाना साहब, आप अर्ध सत्य, अब आप अर्ध सत्य पे आ गए हैं, आधा सच आधा झूठ। सहारनपुर में बिल्कुल बाकायदा जुडिशियल ऑर्डर हुआ था। आप ये शिकायत एक डिबेट में आपने कहा था कि क्या जल्दी थी कि आपने मौका नहीं दिया उनको ऊपरी अदालत में जाने का, ये आप कह सकते हैं, ये डिबेटेबल है, उनको मौका दिया गया नहीं दिया गया ये डिबेटेबल है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उनको मौका नहीं गया था और हाईएस्ट अपील के होने के बाद जस्टिस एक हुई और कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये डिमोलिशन सहारनपुर में हुआ। बराए
9: विक्रम सिंह आप... जी, विक्रम सिंह जी, मैं गौरव भाई से भी चुनौती करता हूं इस बात के लिए, वो कोई ऑर्डर दिखा दे तोड़ने का, दिखा दे कोई ऑर्डर सहारनपुर मस्जिद तोड़ने का। ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का था, ना सिटी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था, सिर्फ एको जो महा कब्जा था उसको खाली कराने का ऑर्डर।
3: आज आज का मुद्दा उज्जैन, आज का मुद्दा उज्जैन का है और एक बात तय है।
9: अरे सर, पिछली बातों को मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है, पिछली
3: ठीक, यू नो दिस इज समथिंग दैट द एडमिनिस्ट्रेशन नाउ सेज they've identified the outsiders. 5 people have been taken into custody. They've identified the social media influencers who tried to create unrest. Some of them have been taken into custody. There are others who will be taken into custody, those who are found to be fomenting trouble. And that's a story we'll be tracking very closely. I want to thank Dr. Vikram Singh and Maulana Sajid Rashidi for joining me here on India First. That is all I have for you on this special broadcast. Many thanks for watching. News and updates continue on India Today. Stay with us.

0: देखिए, इमरान मसूद अधिकृत नहीं है गठबंधन में बोलने के लिए, वो भी इंडिया अलायंस गठबंधन के सांसद हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अकेले के सांसद नहीं है। इसके पहले लड़े तो थे, जीत गए थे क्या? तो आदमी को ढंग से बोलना चाहिए। हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपस की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इमरान मसूद की कोई समाजवादी पार्टी से लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी को इमरान मसूद से लड़ाई नहीं है। फिर इस तरीके के बयानों का क्या मतलब है? मैं एक ही बात कह सकता हूं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जो लोग अधिकृत ना हो गठबंधन पे वो ना बोले। आपने सुना समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति गठबंधन में बातें करता रहा इस तरीके के?
1: अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस की जो बैठक होनी है उसमें नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कारण बताया है कि उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
2: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है, मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण आवश्यक जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
1: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में?
2: देखिए, 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे, तो 2027 के अंदर कोई चमत्कार होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
3: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: जिस प्रकार से पूरी तरह
1: लगा
0: से विपक्ष बेचैन है अपने हाल और
1: आस्ते
0: हताशा से, और आज हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, वो अपने हाल को पचा नहीं पा रहे हैं। जब वो तमिलनाडु और केरल में चुनाव जीतते हैं उस समय उनको इलेक्शन कमीशन की याद नहीं आती है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश में भाजपा को विजय मिलती है तो उसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे फोड़ते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं, राहुल गांधी जी हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: Some more news coming in. 9 Pakistan Army personnel killed by Baloch Women Wing. Baloch Liberation Front claims attack on Pakistan forces. 9 military personnel have been killed. Several have been injured in BLF claimed attacks. So BLF's female guard unit claims attacks on Pakistani forces and 9 personnel have been killed. Female commander seen briefing the fighters. So that's the breaking news that's coming in, where 9 Pakistani army personnel have been killed by Baloch Women Wing, and Baloch Liberation Front has claimed these attacks on the Pakistani forces. My colleague Arvind Ocha continues to stay with us with more details on this. Arvind, over to you. Aur jankari dijiye is bare mein.
1: बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLA के फाइटर्स है, जो महिला फाइटर है जिसको कार्ड यूनिट बताया गया है, करीमा आर्म्स असॉल्ट डिवीजन, इसने एक वीडियो जारी किया है और उसमें दावा किया है कि अलग अलग हमलों में 9 जो पाकिस्तानी जो आर्मी के जवान है उनको मारा गया है. और साथ ही साथ एक वीडियो भी जारी किया है जो ये जो वुमेन फाइटर है और उसमें पूरा जो ट्रेनिंग है उसके बारे में जानकारी दी है और किस तरह से जो पाकिस्तान आर्मी के जवानों को मारा गया है उसके बारे में दिखाया गया है. और लगातार जो BLA है वो पाकिस्तान आर्मी पर अटैक बीते दिनों में उसने बढ़ाया है. तो जो वुमेन फाइटर है उसने ये वीडियो जारी किया है जिसका नाम कार्ड यूनिट है और बताया गया है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं जो बलूचिस्तान में आम लोगों का दमन करते हैं उनको निशाना बनाया गया है. और इसमें जो महिला कमांडर है वो उसका वीडियो भी रिलीज किया गया है जिसमें फायरिंग करते हुए और जो पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियां हैं, काफिला है, उस पर बेहद करीब से फायरिंग करते हुए दिखाई दे रही है. जी
0: अरविंद, हमारे साथ बने रहिए. सो 9 पाक आर्मी पर्सनल हैव बीन किल्ड बाय बलोच वुमेन विंग.

0: कंटिन्यूज टू स्टे विद अस अरविंद, ये जो अटैक है इसको बीएलएफ ने अब क्लेम कर लिया है, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से किस तरीके का रिएक्शन सामने आया और अब उनकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी?
1: देखिए, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी लोगों को किडनैप करती है, उनका दमन करती है, उन पर अत्याचार करती है, बात किसी से छिपी नहीं है। और उसी के विरोध में जो बीएलए के लड़ाके हैं, जो फाइटर हैं, वो लगातार पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाते रहे हैं। बीएलए का कहना है कि सालों की ट्रेनिंग के बाद उसने ये कार यूनिट, जिसमें जो वुमेन कॉम्बैट यूनिट है, उसको तैयार किया गया है और लगातार जो ये कार यूनिट है, जो महिला विंग है, वो पाकिस्तान आर्मी के जवानों को टारगेट कर रही है, उनके जो काफिले हैं उनको टारगेट कर रही है। और ताजा हमलों में 9 जो पाकिस्तान आर्मी के जवान हैं वो मारे गए।
0: जी अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो 9 पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल हैव बीन किल्ड बाय बलोच लिबरेशन फ्रंट। And now shifting focus, SpaceX Starship completes its first ever orbit around Earth. Starship flies 2 laps around the Earth and the mission has also ended early. So Starship booster successfully lands in the Gulf of Mexico and there was an engine issue which raised doubts, but the Starship has cleared for orbit and the mission has also ended early.
2: Stage separation.
3: Respect startup.
4: Down to 5.

0: I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एज करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: जिस प्रकार से
1: बूम लगा छोड़ी
0: पूरी
1: थी।
0: तरह से विपक्ष बेचैन है अपने हार और
1: से
0: हताशा से, और आज हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, वो अपने हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जब वो तमिलनाडु और केरल में चुनाव जीतते हैं उस समय उनको इलेक्शन कमीशन की याद नहीं आती है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश में भाजपा को विजय मिलती है तो उसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे फोड़ते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ, राहुल गांधी जी हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है, पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: योगी चुनाव लड़ेंगे, हमें उनको भी जितवाने में मदद करनी है।
1: अखिलेश यादव इंडिया अलायंस की जो बैठक होनी है उसमें नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कारण बताया है कि उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
2: देखिए नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण आवश्यक जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
1: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में?
2: देखिए 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे, तो 2027 के अंदर कोई चमत्कार होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
3: उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन होना तय है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें लगता है कि इस समय नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, जो कि दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
4: So the internal rift between Samajwadi Party and Congress Party is out in the open over seat sharing, and what we are learning is that the Congress Party is seeking 150 seats, whereas as per sources, Samajwadi Party is not ready to give Congress Party so many seats. My colleague Ashish Srivastava is also now joining us with more details on this. Ashish, ये जो rift है ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, अभी हमें जानकारी मिल रही है कि Congress Party 150 seats मांगने वाली है समाजवादी पार्टी से, लेकिन समाजवादी पार्टी शायद इतनी सीट्स देने के लिए राजी ना हो, तो कब तक इस पे फैसला होते हुए दिख रहा है?
5: आप बिल्कुल अंजलि, देखिए सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी जो अपने आप को अभी दावा करती है वो स्ट्रांगेस्ट अपोजिशन है और माना भी जाता है। अब ऐसे में वो जब पूरी कह रही है कि कांग्रेस से अपनी सीटों का विवरण हमें दीजिए कि किन किन सीटों पर आप लड़ना चाहते हैं, कम से कम वो कैंडिडेट तो दीजिए। अब कांग्रेस कह रही है कि हम 403 सीटों पर लड़ सकते हैं, हमारी कैपेसिटी है, और हमें अगर कहीं फ्लेक्सिबिलिटी बनती है तो 150 प्लस जा सकते हैं। अब ऐसे में एक तरफ समाजवादी पार्टी महज 100 के अंदर रखना चाहती है कांग्रेस को, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि 150 प्लस, यानी कि 125 के आसपास। तो आप मान के चलिए कि ये दायरा जो है गैप का वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव इसीलिए कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पहली बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं जो इंडिया अलायंस की होनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अभी आगे को एक पेंडिंग रखा जाएगा डिसीजन कि कब तक ये फाइनल होगा, कितने चरणों में ये फाइनल होगा, ऐसा हमने पहले भी देखा है। लेकिन कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि अगर हम माने तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों इस समय इंडिया अलायंस के पार्ट बनना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों नेता एक दूसरे पर वार और प्रतिवार कर रहे हैं। वजह यही है कि कांग्रेस का मानना है कि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वो एमपी की हो, उन पर वो सारी सीटों पर लड़ना चाहती है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण सीटें हैं, फिर चाहे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर भी मजबूत स्थिति में है। लेकिन समाजवादी पार्टी साफ कह रही है कि आप पहले लिस्ट और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ में हमें कैंडिडेट का नाम दीजिए। तो अब यहीं पर आके दोनों पर विवाद अटक गया है।
4: एक बहुत बड़ा विवाद रायबरेली और अमेठी सीट के भी ऊपर है, जिसको गांधी बैस्टियन कहा जाता है, लेकिन हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि कैसे अखिलेश यादव की जो यात्रा थी उसकी शुरुआत भी वहीं से हुई, उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी आपत्ति जताई थी। और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि जो समाजवादी पार्टी है वो भी ये सारी सीट जो रायबरेली और अमेठी में होंगे वो कांग्रेस को नहीं देने वाली। ऑलराइट आशीष, आपको शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। इनफैक्ट लेट्स टेक अ लुक एट द इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव 2026, वेयर लीडर्स फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, द टॉप लीडर्स विल बी जॉइनिंग अस एट इंडिया टुडे फॉर इनसाइटफुल कॉन्वर्जेशंस, एंड लेट्स टेक अ लुक।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: चुनाव आयोग की तरफ से इनको जरूरत क्या पड़ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, इसलिए है कि चुनाव आयोग पर ही इनको भरोसा है, जनता का भरोसा इनको नहीं है। इनको पता है जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है और 27 में जब चुनाव होगा 27 के चुनाव में पूरी तरह से इनका सफाया हो जाएगा। अब इनको भरोसा अगर किसी को है जिसके सहारे ये उपचुनाव जीते हैं तो वो सहारा केवल चुनाव आयोग का है, इसलिए चुनाव आयोग के पक्ष में ये प्रेस कर रहे हैं।
1: चलिए वो अपनी तरह राजनीति करते रहे, परंतु देश के संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार प्रश्न उठाने का काम कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है। वो आर्मी हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, निरंतर वह देश के संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं और निराधार प्रश्न उठाते हैं।
2: राहुल गांधी जी, कान खोलकर सुन लीजिए, झूठ को 100 बार दोहराना

0: सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: विकासपुरी रिंग रोड के ऊपर में पिछले कई दिनों से रोड बनाने का काम चल रहा है। वहां के विधायक जर्नेल सिंह द्वारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को कि हमको कॉन्ट्रेक्टर से मिलाइए और उनसे कमीशन दिलवाइए, ये वो काफी दिन से उनको बोल रहे थे। आज जब मैं उस रास्ते से निकल रहा था तो मैंने इंजीनियर्स को बोला कि एक बार मैं सारे काम को देखना चाहता हूं। जब मैं वहां पे रुका, मैंने उनका 45 मिनट तक वेट किया। हमारे जो वहां के कार्यकर्ता थे, मैंने उनको नहीं बुलाया। जब वहां पे जर्नेल सिंह पहुंचे तो वो अपने कार्यकर्ताओं को पहले से सूचना देकर आए, और जब वो आए तो उन्होंने आते ही वहां पे बदतमीजी शुरू कर दी। उनके एक कार्यकर्ता ने जब मेरे परिवार को गाली देना शुरू किया, तब कोई भी व्यक्ति उस आवेश में आके जो करेगा, मैंने भी वही किया।
1: देखिए, बहुत ही शर्मनाक हरकत दिल्ली के भाजपा के पीडब्ल्यूडी मंत्री द्वारा की गई है, और हैरानी की बात यह है कि जब उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ तो अफसरों से जवाब लेना चाहिए था, इंजीनियरों से जवाब लेना चाहिए था, ठेकेदार से पूछना चाहिए था, भाई ये कौन सी क्वालिटी की सड़क तुम बना रहे हो। जैसे ये सड़क उनको दिखाई गई, मंत्री जी आप हो बैठे, और हमारी तरफ से जो व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा था इस सारी बातचीत को, उसका फोन पटक के सड़क पे मारा और उसको थप्पड़ मारा, जान से मारने की धमकी तक दी। इसे भी इस चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती, मंत्री जैसे एक बड़े पद पर बैठा व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो या तो वो नशे के अंदर थे और या फिर वो बहुत ज्यादा अहंकार के अंदर है। पर जनता आज सरे आप इस चीज को तिलक अग्रवाल को देखा।

0: EBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: जिस प्रकार से पूरी तरह से विपक्ष बेचैन है अपने हाल और हताशा से, और आज हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, वो अपने हाल को पचा नहीं पा रहे हैं। जब वो तमिलनाडु और केरल में चुनाव जीतते हैं उस समय उनको इलेक्शन कमीशन की याद नहीं आती है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश में भाजपा को विजय मिलती है तो उसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे फोड़ते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ, राहुल गांधी जी हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है, पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: यू सोच बदलो और बैंक भी।
2: देखिए, इमरान मसूद अधिकृत नहीं है गठबंधन में बोलने के लिए, वो भी इंडिया अलायंस गठबंधन के सांसद हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अकेले के सांसद नहीं हैं। इसके पहले लड़े तो थे, जीत गए थे क्या? तो आदमी को ढंग से बोलना चाहिए। हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपस की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इमरान मसूद की कोई समाजवादी पार्टी से लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी को इमरान मसूद से लड़ाई नहीं है। फिर इस तरीके के बयानों का क्या मतलब है? मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जो लोग अधिकृत ना हो गठबंधन पे वो ना बोले। आपने सुना समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति गठबंधन में बातें करता रहा इस तरीके के?
3: अखिलेश यादव इंडिया अलायंस की जो बैठक होनी है उसमें नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कारण बताया है कि उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
4: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण आवश्यक जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
3: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में?
4: देखिए, 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे, तो 2027 के अंदर कोई चमत्कार होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
5: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: एक व्यक्ति को आपने SIR में डाला है।
1: वोटर लिस्ट पे नाम है इनका, आपने उतार दिया उनका नाम।
2: मकान से कुछ लेना देना नहीं होता है वोट का।
1: इनका नाम वोटर लिस्ट, मेरी बात सुनिए, इनका नाम वोटर लिस्ट पे है और था और सालों से है। इनका नाम आपने आपने किस बेसिस, वोटर लिस्ट पे नाम है इनका, आपने उतार दिया उनका नाम।
3: SIR गो बैक सर, गो बैक। तो जब तक सर वापस नहीं लिए, इस देश में युवा नहीं रुकने वाला है। तो इसीलिए जैसा अंग्रेजियों ने, ब्रिटिशर्स ने साइमन को इस्तेमाल किए, ब्रिटिश जनता पार्टी यूजिंग इलेक्शन कमीशन, जैसा साइमन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को भी ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा है। इस देश में जो फाउंडेशन है वोटिंग राइट, वो निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए पूरा युवा ने सड़क पे आने के लिए बहुत जरूरी है।
4: नैतिकता होती तो चले जाना चाहिए था, लेकिन इस सरकार के अंदर नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है। मतलब इतना एक्सपोज होने के बाद भी कोई आदमी कैसे कुर्सी पर बैठा रह सकता है।
5: इंडिया का गठबंधन जो है, का गठन बहुत बड़े काज को लेकर हुआ। इस देश से की अर्थव्यवस्था जो वर्तमान में डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत चकनाचूर हो गई। ऐसे समय में ये इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
6: आजादी स्लोगन
7: गांधी का फोटो
6: ভালো করে নজর রাখবেন। এর সঙ্গে কোন দেশ বিরোধী শক্তির আবার মিটিং না হয়। দিমাগি নকশালদের এখন মূল মন্ত্রণাদাতা হয়েছে, একহাতে জামাত একহাতে দিমাগি নকশাল।
8: Meanwhile, India Today visited Yamuna Bank Bela Estate. Rahul Gandhi claimed 727 voters had been cancelled. Voters claim that they have all the required documents. Despite that, this action was taken. We are now getting you the reality of Delhi's vote chori claim. Rahul Gautam on the ground.
9: They are saying that they've been voting here since 1961, and that's the one of the electoral rolls of 1961, 2075, 2002. That's the base year on which SIR exercise is going on, and these people are claiming that now the fact that now their votes have been cut, essentially they'll not be able to claim any government schemes, or they'll not be able to be calling themselves as Indians.
10: जब से ये देश आजाद हुआ, जब भी पहली वोटिंग हुई है, तो इसके बड़े बूढ़ों के नाम यहाँ पे चलते आ रहे हैं अभी से, और आज तक ये वोट यहाँ पे परमानेंट देते आ रहे हैं। किसी ने कोई वोट नहीं छोड़ा, परमानेंट यहाँ पे वोटिंग लगातार चलती आ रही है।
11: मैं 98 में वोट डाला था, लेकिन मेरा वोट 2002 में बना था। 2002 में मेरा वोट बना था, और 2002 कोई सा भी ऐसा वोट नहीं है जिसमें हम लोगों ने वोट में पार्टिसिपेट नहीं करा।
9: आप लगातार वोट डाल भी रहे थे?
11: बिल्कुल, हमारा पोलिंग बूथ नंबर 33 था।
10: जो लास्ट टाइम पे हमने जो 2025 के भी वोट करे, तो यहाँ पे जो बच्चे हैं उनकी विध्वंसेस, तो वो सबने यहाँ पे वोट कराया। 2025 के अंदर दिल्ली सरकार के वोट हुए थे, उसमें सबने वोट कराया यहाँ पर आकर।
12: पता नहीं अचानक से क्या हुआ है कि वोट यहाँ पर हमारा SIR में, मतलब फॉर्म वगैरह भरे थे उन्होंने, पर पता नहीं क्यों यहाँ से 728 वोट काट दिए गए।
9: देयर आर मोर पीपल कैरिंग होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स हियर। दीस पीपल आर क्लेमिंग दैट दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस एजेस, एंड इन फैक्ट हैव आल्सो बीन पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्टोरल प्रोसेस, एंड इट इज ओनली वेरी रिसेंटली देयर नेम्स हैव बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द इलेक्टोरल लिस्ट, एंड obviously, they are now scared that whether they'll actually be able to take benefits of government schemes or not, or whether they'll actually be able to now participate in voting exercise or not.
8: And we're now getting you details of Congress's 5 demands that make complete data on major electoral roll changes public. Inform deleted voters and give them the right to appeal. Give political parties electoral rolls and

0: relevant data on time. The third demand is that there should be an independent, time-bound probe into serious electoral discrepancies, ensure transparency in critical election data and decisions. So those are the demands that the Congress is now making. Let me take this to Moshmi Singh, joining us on the broadcast with all the details on these demands. Over to you, Moshmi.
1: Right. So, you know, Mallikarjun Kharge's opening remark actually literally points out to what we were saying. It makes those five demands, asking for more objectivity and more chance of hearing as far as opposition's concerns are related. We'll speak to Mr. Madhu Yashki, who is actually heading the All India Professional Congress. And how do you see Mr. Kharge's opening remark? He says that the resolution should also reflect our concerns.
2: The fundamental duty of Election Commission of India is to conduct a free and fair elections, which they failed to do it. So it has become an extended office for the BJP party, and they're only working as per the whims and premises of the Pradhan Mantri or the BJP party. So what our Congress Honorable President is trying to say, the duty of Election Commission has to be impartial. They should give a confidence to both the ruling and opposition parties. Okay. And the electoral rolls, what directed by the Honorable Supreme Court to add those 16 lakh votes, how it is deleted, how a third party had access to those data, how the Chief Election Commissioner, ignoring the Honorable Supreme Court directive and given data to somebody, third party, to raise objection on those 16 lakh votes, which is absolutely unconstitutional against the contempt of commons or contempt of courts, a criminal offense by the Chief Election Commissioner.
1: Mr. Yashki, do you think that the CWC will actually intensify and amplify the attack on CEC, will be elemental in your India bloc meeting success and, taking this forward? What's going to happen?
2: Rather, it is an attack on the Indian Constitution by the Chief Election Commissioner and the BJP party and the NDA government, which is doing it. What we are asking and the opposition, Honorable Rahul Gandhi, leader of opposition, or other opposition parties, political parties are asking, you be transparent. You are a constitutional body. You cannot take a sides. You have to fulfill the duty rested on you by the Constitution of India to conduct a free and fair election.
1: Okay.
2: Which you are not doing it. And your own commissioners are objecting it. That is the news has come out in press. And instead of responding to that, why the BJP party president coming and answering on behalf of Election Commission of India?
1: So you can understand, Mr. Yashki's statement also points out to the fact that this is a political war that is being very bitterly fought. And I think that Mr. Kharge has also pointed and hinted at the resolutions that we expect really are going to come up. Because, it could in fact demand that Ganesh Kumar should resign, or the exit of Ganesh Kumar, fixing his accountability, as Rahul Gandhi had said, whether he's retired or not, we are going to come after him. We are going to get after those who have compromised democracy. So we'll have to wait and watch what Rahul Gandhi has to say in the CWC.
0: Moshmi, I request you to stay on with us. We're also now focusing on Congress Chief Mallikarjun Kharge's big attack on the Election Commission, where he said that voters were removed via calculated conspiracy. He's said that Congress has a historic responsibility to save democracy and constitution. Kharge has accused the Modi government of hollowing out, quote-unquote, democratic foundation. Kharge has alleged voter names being removed through calculated conspiracies, quote unquote. Kharge has also called out CEC a quote unquote puppet of the Modi government. Kharge has said that protector has turned into predator. This over the Election Commission. Kharge has questioned why two election commissioners were kept out of internal portal. Kharge has also questioned who took the decision regarding SIR. Kharge has backed Rahul Gandhi's claims on voter data and electoral rolls. He's also accused the government of trying to disenfranchise the youth. He said that Congress will not let Modi Shah conspiracies succeed. Taking this back to Moshmi for further details on what Kharge has said.
1: So absolutely, I think Mr. Kharge has taken a leaf out of what Rahul Gandhi said in the press conference and gone and amplified it in his opening remark. Clearly, putting the chief election commissioner under the scanner, pinpointedly attacking him, pinpointedly talking about the entire process and how it has been subverted for long. Mr. Kharge goes on to put on those five demands. But underlining that, you know, democracy and years of after freedom, we have strived to be the largest democracy. And this is a very, very serious situation that the country finds itself in. Remember, you know, it could be a political fight that the Congress is looking at, but the Congress realizes that the fight could meet a very, very short end if it is not backed by people's agitation, people taking it to the street. Mr. Yashki, how do you see this? Will Congress be able to get the crowd, get the Indian citizens really rallying behind it on this issue?
2: Well, people of this country realizing by denying the vote, the welfare, what they deserve to get it from the government, which is going to be denied by the government, by stopping those electorate which are deserved to be supported. So it is indirectly not just denying the vote. It's not just denying the constitutional guarantee given to the every citizen of the country. It's rather cheating them and looting them. So it's we have to explain, we are explaining to the common man, it's not just your vote, your livelihood, your future, your children's future being looted by this government. Okay. Using the Election Commission of India.
1: So very interesting, you know, because remember, Apki Baar 400 Paar was, that slogan was taken by Rahul Gandhi to tell the people that the constitution is going to be changed by the BJP because they're so sure about 400 Paar. Now that 400 Paar said by Prime Minister Modi was played again by Rahul Gandhi in the press conference on the entire Gyanesh Kumar issue. So Rahul Gandhi thereby playing out Amit Shah, playing out Prime Minister Modi's statements about their confidence about winning elections and, you know, taking it 360 degrees to say, see, they knew it because the elections are being rigged. And if you want your democracy to stay, you will have to take this fight to your very home and fight it as if it's your own personal battle. And that is what Mr. Kharge seems to be saying, talking about history, talking about the thriving political landscape and electoral history of the country, saying that never ever before this has happened. This is an emergency situation where people should, you know, rise to the occasion of trying to save their country. And thereby, you know, the resolutions are going to be harder. I think there will be CWC resolutions that will be coming in. And that could actually set the template for what comes up as a common announcement in the India bloc meeting.
0: All right, we'll come back to you for further updates. And well, also in focus is SP versus Congress in UP. Congress remains defiant over getting a bigger share in seat sharing in UP. Its state in charge, Rajendra Pal Gautam, has now asserted that his party will contest at least 150 seats and is also preparing for all the 403 seats in the state, adding that seat sharing talks between SP and Congress will be held in October with an attempt to finalize and lock in the seats. India Today has learned that while Congress is eyeing 150 seats, Samajwadi Party is ready to offer only 85 to 90 seats and that the two sides are in a tussle over the Rae Bareli Amethi seats where SP wants to contest 3 or 4 seats, but Congress is not ready to give up on its bastions. Amid this, Akhilesh Yadav has decided to skip the crucial India bloc meeting on the 30th of October. Congress MP Imran Masood targeted the SP Supremo and said it is his loss if he is upset and that he needs to keep a bigger heart to lead. The Samajwadi Party has played down the rift and asserted that both parties will contest the polls together and that the final decision on seats will be taken by the top leadership.
3: अभी बातचीत शुरू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी हमारा जो संगठन सृजन का था वो लगभग फाइनल है, आज उसके ऊपर भी मीटिंग है, बहुत जल्दी संगठन को हम डिक्लेयर करेंगे। सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर सम्मान चाहते हैं, बराबर सीटें चाहते हैं। बाकी हम फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने वाली बात है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरी तैयारी 403 सीट पे चल रही है, रात दिन काम चल रहा है और इसलिए चल रहा है कि गठबंधन जब होगा तो जहां से हमारे गठबंधन के सहयोगी चुनाव लड़ेंगे हमें उनको भी जीतवाने में मदद करनी है।
4: अखिलेश यादव इंडिया अलायंस की जो बैठक होनी है उसमें नहीं आ रहे हैं, उन्होंने कारण बताया है कि उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
5: देखिए नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा, आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण आवश्यक जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
4: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में?
5: देखिए 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे, तो 2027 के अंदर कोई चमत्कार होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
6: उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन होना तय है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें लगता है कि इस समय नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
0: Let me take this to my colleague Ashish Srivastav joining us on the broadcast. Ashish, do take us through the internal scoop of what the Congress is wanting, what the Samajwadi Party is willing to offer, when the meeting is to happen in October, and how really are the talks slated to pan out?
7: अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी जो है वो चाहती है कि पहले कांग्रेस अपने कैंडिडेट की लिस्ट उनको दे दे और उसके बाद कांग्रेस, लेकिन इसके बावजूद कह रही है कि हम 150 से प्लस यानी कि हम ऊपर जाना चाहते हैं और 403 की तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा पीडीए का जो रथ है वो रायबरेली से गया, अब रायबरेली क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है और वहां पर कांग्रेस कह रही है कि हम सीटें नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से वो सीटें भी मांग रही है जो उसके गढ़ में है, फिर चाहे वो अमेठी में हो, रायबरेली की हो या इसके अलावा अन्य सीटें हो उसमें भी मांग कर रही, तो पेच यहीं पर जाकर फंस जा रहा है। अब ऐसे में ना कि वो कैंडिडेट दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, ना ही किसी तरीके की कॉन्वर्जेशन हो रही है, वाद विवाद तो जरूर हो रहा है और इसी को लेकर अब पेच ज्यादा बड़ा फंस इसलिए रहा है क्योंकि पहली बैठक में अब अखिलेश यादव नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं दोनों के बीच में उसमें तो पहले क्लैरिटी यही होनी चाहिए कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, उसका लिस्ट पूरा बायो कहां का ग्राउंड है वो सब कुछ सौंपे। लेकिन कांग्रेस कह रही है हम तो 403 पर हैं, आप हमको कम से कम नहीं 150 प्लस सीटों पर हम आके रुक सकते हैं। तो ऐसे में अब दोनों के बीच में ये दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इसी को लेकर ये मंथन जारी है। लेकिन ये तो जरूर है क्योंकि स्ट्रांग अपोजिशन होने के नाते उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मानना है कि जिताऊ कैंडिडेट को ही सिर्फ हम टिकट देंगे। अब ऐसे में वो टिकट समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, दोनों में बड़ा अंतर है क्योंकि कांग्रेस कह रही है उसके पास सारे जिताऊ कैंडिडेट हैं, पर कहां है वो लिस्ट सपा मांग रही है, तो यही दोनों के बीच में अब पेच फंस गया है। हालांकि इस अलायंस वाली जो बैठक है इसमें कुछ क्लैरिटी जरूर आ सकती थी, लेकिन अखिलेश यादव के ना जाने से भी वो अब क्लैरिटी अब दूर दूर तक नहीं लग रही है। लेकिन दोनों तरफ के दल इस समय, फिर चाहे वो रायबरेली या अमेठी की सीटें हों, सीतापुर से जुड़ी हुई सीटें हों, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीटें हों, पूर्वांचल की वो सीटें हों, इन सभी पर सभी अपना अपना दांव खेल रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि आपको हम 100 के अंदर रखना चाहते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं सूत्र से जानकारी है। तो अब जब 150 प्लस की बात होगी तो दोनों कहां एक ही कह सकते हैं लाइन पर आ सकते हैं। जरूर ये जरूरत है इस समय इंडिया अलायंस में, चूंकि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के बीच में बातचीत हो, लेकिन अभी वो बात बनती हुई नहीं दिख रही है। ये तो जरूर माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस अभी थोड़ा डगमगा रहा है, लेकिन कब तक ये संभलेगा, ये चुनाव का समय आ गया है। अखिलेश यादव तुरंत पीडीए यात्रा निकाल चुके हैं और वो भी रायबरेली से, और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है हम तो कन्नौज और इटावा मैनपुरी से निकालना शुरू करेंगे, तो वाद विवाद की स्थिति पूरी जारी है। अब ये गठबंधन कितना आगे जाता है ये तो बहुत महत्वपूर्ण होगा जानने की बात, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि गठबंधन कहीं से कहीं सेट होता नहीं दिख रहा है। उनके नेता एक दूसरे से जरूर ये कहते नजर आ रहे हैं कि सभी शांत रहें, कम से कम बड़े नेताओं को बोलने दें, लेकिन वो स्थिति भी अभी बनती हुई नहीं दिख रही है। तो सीटों के लेकर, चूंकि बीजेपी को हराने को लेकर ये दोनों ही दल इंडिया अलायंस इंडिया ब्लॉक में है, अब ऐसे में फिर चाहे MIM हो या अन्य दल हो वो साथ कह रहे हैं कि हमें लेकर चलो, कहां तक बैठेगा ये पूरी कह सकते हैं कहानी, ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके के हालात है समाजवादी पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, लगातार वो मैदान में है, लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को अभी डिसाइड करना होगा कि वो यूपी का नेता और साफ साफ उन कैंडिडेट की लिस्ट और उसके साथ साथ उनका ग्राउंड रिपोर्ट, उसके बाद ही कहीं समाजवादी पार्टी मानेगी। और यही वजह है कि अभी तक दोनों के बीच में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और रायबरेली से रथ निकालने के बाद कांग्रेस थोड़ा और ही ज्यादा कह सकते हैं कि उस मोड में आ गई है कि एक तरफ तो ना सीटों की बात हो रही, दूसरा आप रायबरेली से रथ निकाल के दिखाना चाहते हो ताकत, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब विवाद शुरू है। तो अभी ब्लॉक की जरूर बैठक है, उसमें कुछ जरूर डिसाइड होगा, शुरुआत होगी, लेकिन ये मान के चलिए कि समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक 100 के अंदर रखना चाहती है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का आंकड़ा यही पहुंच चुका है 150+, यानी 150 जो दावा किया गया राजेंद्र चौधरी के द्वारा। तो ये हालात अभी ऐसे ही दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं डामाडोल लग रहा है ये पूरा गठबंधन, लेकिन कितना समय लगेगा इसको संभलने में ये तो अभी वक्त लगेगा। जी
0: आशीष, फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। एंड देयर आशीष गिविंग अस इनसाइट्स इनटू हाउ द सिचुएशन इज वेरी वेरी अनसर्टेन व्हेन इट कम्स टू द अलायंस बिटवीन कांग्रेस एंड एसपी इन यूपी एंड हु रियली विल प्ले बिग ब्रदर। यूपी के लड़के की in seat fight, that is the key focus at the moment. Now the first scoop we are getting that Congress is eyeing about 150 seats, that's the minimum they want to fight on, whereas Samajwadi Party is offering not more than 85 to 90 seats to the Congress. But like Ashish was also saying, that they're only letting the big leaders talk and not send out any wrong messages at this point in public domain. The tussle is primarily over Rai Bareli and Amethi seats, which are the key bastions of the Congress, something that the Congress is not willing to let go. But the SP is also wanting to fight on about 3 to 4 seats in Rai Bareli and Amethi. The fifth scoop is how the Samajwadi Party is eyeing Unchahar, Harchandpur, Amethi seats, and the Congress is not ready to give away its strongholds at any cost. And clearly all is not well between the UP ke ladke Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav ahead of the crucial UP polls. Akhilesh is skipping the India bloc meeting. That is the latest flashpoint. But the real battle is over seat sharing, with both sides taking claim to each other's turf.
8: Akhilesh Yadav aur Rahul Gandhi.
9: Akhilesh Yadav aur Rahul Gandhi.
8: Jindabad, jindabad.
9: Akhilesh Yadav aur Rahul Gandhi.
10: The UP ke ladke, who once pictured a united opposition front, now appear to be heading for a head-to-head, at least on seat sharing. The latest trigger, Akhilesh Yadav's decision to skip the September 30 India bloc meeting. The meeting is being called to discuss the opposition's strategy on the Election Commission, SIR and the CEC issue. The SP says Akhilesh has other commitments.
11: आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यक्रम पहले से तय हैं। विधानसभा चुनाव में 3-4 महीने का मुश्किल से समय है, 90-100 दिन का। इसलिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण इंडिया गठबंधन की बैठक में नहीं जा रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे।
10: कांग्रेस सेज दिस इज अबाउट राज्यसभा नॉमिनेशंस।
12: No, that Rajya Sabha election nomination is there in you. That's what he told the Congress president. Yes. Senior leaders from his party, all other seniors are coming.
10: But this is not just about one meeting. India Today has learned that the bigger fight is over seats. Congress demanding 105 to 115 seats. SP offering 85 to 90 seats. And then comes the biggest flashpoint. Rai Bareli Amethi. The SP wants 3 to 4 seats in the Rai Bareli Amethi belt, including Unchahar, Harchandpur and Amethi. But Congress is not ready to give up its strongholds. And this is where the alliance fight is getting louder. Both parties are now making rival leadership pitches.
13: Look, in 2022, it happened. And the results came in front of us. तो 2027 के अंदर कोई चमत्कार होगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना, अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।
14: बिल्कुल ही बेवकूफी का बयान है। मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए भी।
10: Meanwhile, Akhilesh launched his PDA Yatra from Rai Bareli, a Congress bastion, and Congress responded by entering SP bastions. The message is clear. The alliance may still exist on paper, but both sides are already testing each other's turf. The 2024 numbers show why both sides want this alliance. The SP and Congress fought together in the 2024 Lok Sabha polls. The SP won 37 seats. Congress won 6. Together, 43 out of 80. But go back to 2022, there was no SP-Congress alliance. The SP won 111 assembly seats. Congress won just 2. So the 2027 question is not just about seats. It is about whether the Congress and SP can fight the BJP together while battling each other for political space. Because UP is said to be the gateway to power in Delhi. But this time, before taking on their common rival, the first contest may be between the allies. Bureau Report, India Today.
0: And we are picking up details of a shootout that has been reported inside Punjab Gurudwara, where four masked men entered a Gurudwara shooting the Sevadar. It was a midnight attack that happened at Sangur's Badru Khan Gurudwara, where the Sevadar was shot. Take a closer look at that CCTV footage on the right of your screens. Four masked men who entered the Gurudwara and attacked a Langar Sevadar, the victim who's critically injured after being shot. Major incident that has been reported at Badru Khan Gurudwara, where unidentified assailants went on to shoot at a Sevadar. The attack at the Gurudwara built in the memory of Maharaja Ranjit Singh, where four attackers were caught on CCTV. Questions have been raised over Gurudwara's security in Sangrur. Four masked men attacked at midnight and killed the Sevadar who was on duty at the Gurudwara. We're trying to get further details of what exactly has been the motive behind this killing. Remember, the investigation is underway and what the cops have found out so far. But those four assailants were very clearly caught on camera in the CCTV footage, where you see those four assailants shooting at a Sevadar who was on duty. This was a midnight attack. This happened at a Gurudwara in Sangrur in Punjab. The shootout that has been reported of four masked men who entered the Gurudwara and just shot at the Sevadar. And the other big story, Delhi cop who was assaulted by Aam Aadmi Party Netas. The incident happened when Arvind Kejriwal went to Tilak Nagar on Monday to meet his party worker who was slapped by Delhi Minister Parvesh Verma. In the video, Aam Aadmi Party workers can be seen pouncing on the cop and assaulting him. This comes just a day after Parvesh Verma slapped Aam Aadmi Party worker Sahib Singh during his inspection of a road in the Tilak Nagar area. The minister was confronted by AAP leaders over the poor construction of the road, after which he lost his cool and slapped Singh. A case has been filed against him based on a complaint of the victim. However, Delhi police has registered a non-cognizable report saying action has been taken based on the legal provisions applicable to the complaint. The victim, Sahib Singh, has said that he tried hard to get an FIR registered but could not, pointing out that an FIR was filed when a girl spoke against the Prime Minister, but no FIR has been registered against a minister for slapping a man. On the other hand, an FIR has been lodged against AAP MLA Jarnail Singh based on a complaint by PWD engineers. The FIR has been filed over charges of obstructing official work as well as intimidation and threats.
15: आगी इसके अलावा अगर किसी आम आदमी पार्टी या फिर रैंडम किसी भी मामूली इंसान ने, किसी युवा ने, किसी ने भी ऐसा कुछ करा होता, उनके खिलाफ बोला भी होता। एक लड़की थी जिसने मोदी जी के बारे में कुछ बोला था, उसके खिलाफ FIR हो गई थी। तो यहाँ पे तो मंत्री आपके चाटे मारते घूम रहे थे उनके खिलाफ FIR के लिए।
16: कि कल जब मंत्री जी यहाँ पे सड़क का मुआयना करने आए उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूँ तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
17: मैं जब वहां पर मौजूद था मैं केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में FIR दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना है, इनको गाली गलौज करना है और हमारे काम में बाधा डालना है।
18: देखिए इसमें भाजपा के राज में कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई झूठा आरोप भी लगाएगा तो हम पर मुकदमा हो जाएगा और दूसरी तरफ सारे सबूत भी मौजूद होंगे तो NCR काट के छोड़ दिया जाएगा। ये भाजपा का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। पर भाजपा ये सुन ले, अगर उनको लगता है इनकी एफआईआर से हम डर जाएंगे, इनके घोटालों को उठाना बंद कर देंगे, इनकी गुंडागर्दी से दब जाएंगे तो इनकी गलतफहमी। जब तक भाजपा को जड़ से उखाड़ कर अब इस देश के लोग नहीं फेंकते तब तक हम रुकेंगे नहीं।
0: Time now for a short commercial break. Stay tuned to India Today for the very latest.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जिस प्रकार से
1: पूरी
0: तरह से विपक्ष बेचैन है अपने हार और हताशा से, और आज हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, वो अपने हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जब वो तमिलनाडु और केरल में चुनाव जीतते हैं उस समय उनको इलेक्शन कमीशन की याद नहीं आती है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश में भाजपा को विजय मिलती है तो उसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे फोड़ते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं, राहुल गांधी जी हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है, पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।

0: देखिए, इमरान मसूद अधिकृत नहीं है गठबंधन में बोलने के लिए, वो भी इंडिया अलायंस गठबंधन के सांसद हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अकेले के सांसद नहीं हैं। इसके पहले लड़े तो थे, जीत गए थे क्या? तो आदमी को ढंग से बोलना चाहिए। हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपस की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इमरान मसूद की कोई समाजवादी पार्टी से लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी को इमरान मसूद से लड़ाई नहीं है। फिर इस तरीके के बयानों का क्या मतलब है? मैं एक ही बात कह सकता हूं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस बात को ध्यान देना चाहिए कि जो लोग अधिकृत ना हो गठबंधन पे वो ना बोले। आपने सुना समाजवादी पार्टी का कोई भी व्यक्ति गठबंधन में बातें करता रहा इस तरीके के?
1: अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस की जो बैठक होनी है उसमें नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कारण बताया है कि उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर के लगातार सवाल, क्या उनको नाराजगी है उनके अंदर किसी भी तरीके?
2: देखिए, नाराजगी है तो अपना नुकसान होगा। आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप नेतृत्व करना चाह रहे हैं तो आप ही को बड़ा दिल करना पड़ेगा ना। आपको नाराजगी किस बात की है, मुझे तो समझ में नहीं आता। और इस वक्त महत्वपूर्ण आवश्यक जरूर है इंडिया गठबंधन का मजबूत होना। इलेक्शन कमीशन के सारे खुलासे हो रहे हैं, उनके बाद भी अगर आप समझ रहे हैं कि बहुत आसानी के साथ पार पा जाएंगे तो बहुत मुश्किल लगता है।
1: गठबंधन जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, क्या क्या वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है 2027 के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में?
2: देखिए, 2022 में यही हुआ था और नतीजे सामने आए थे, तो 2027 के अंदर कोई चमत्कार होगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के बिना, राहुल गांधी के बिना अब देश के अंदर इनके साथ लड़ पाना नामुमकिन है।

0: जो सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Nature's fury in Nepal. Landslides and heavy rainfall have struck the Himalayan nation. The Gandak River that flows from Nepal to India is overflowing. The impact is being felt in Bihar. Over 5 lakh cubics of water was released from the Valmiki Nagar barrage on Monday. From Valmiki Nagar to Bagha, the region along the Gandak in West Champaran is badly hit. People were evacuated from several villages in Valmiki Nagar.
1: सड़क पे आ गया है और साले साल का बात है ये नहीं कि इसी साल का है हर एक साले साल आता है यहाँ कोई पूछने तक नहीं आता है
0: Flood waters entered residential areas in Bagha.
2: सरकार तक हमारी आवाज नहीं चौंक रही है यहाँ पे जल स्तर एकदम लगातार बढ़ता जा रहा है और न्यूज देख रहे हैं कि पानी अभी भी और बढ़ने वाला है हम लोग अपना जितना भी माल जाल है और सामान है सब दूसरे ऊंचे स्थान पे जैसे बांध हो गया वहाँ पे लेके जा रहे हैं हम लोग
0: The latest floods have impacted around 80,000 people in West Champaran and Supaul districts. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary has called for a long-term plan to mitigate flood risk. Bureau Report, India Today.

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: A lot of people take xylem husk for fiber.
4: Yes.
3: And
5: अगर chia seeds जितनी marketing xylem husk की हो जाए तो India की gut problems काफी सारी solve हो जाएंगी।
3: हो जाए। मुझे लगा आप कहेंगे variety होनी चाहिए fiber में, रोज रोज नहीं खा सकते आप piece of gold।
4: See as a doctor, medicinal use किसी भी चीज का हो, I will not recommend without talking to your doctor. But isabgol is xylem husk is the superman for fiber, provided done right, had with at least 3 glasses of water and at least 3 liters of water in a day. Ideally add a probiotic to it with curd
3: before meal, after meal,
4: 7 se 9 ke beech mein, dinner ke 2 ghante pehle 2 ghante baad. Aur dawai na le apne bp aur anticoagulants, agar heart patient hain to blood thinner chal rahe hain, wo sab uske aas paas na le, kyunki wo gel banata soluble fiber hai pet mein, to delay karta hai absorption. Pata laga aapko anticoagulant chal rahe hain, aapko heart attack aa gaya, to dawai 4 ghante pehle aur baad mein na le, aur ek breath test karwa le. क्योंकि अगर आपको सीबो जैसी प्रॉब्लम है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि वो पेट में जाके एकदम से वो बना रहा है ना, जेल बना रहा है, और क्योंकि वो जेल बना रहा है, आप उसे पानी दोगे तभी वो बाइल एसिड को अब्सॉर्ब करेगा, बाइल एसिड को एक्सक्रीट करेगा, तभी आपका लिवर एलडीएल को खींचेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को और बाइल एसिड में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज अब्सॉर्प्शन को कम करता है, डायबिटिक्स के लिए सब बोल बहुत अच्छा होता है, डिले करता है ना मामले को, ठंडा कर देता है. जैसे आपकी से लड़ाई हुई तो समझदार आदमी कहता है लेट्स स्लीप ऑन इट टुनाइट, आई विल नॉट रिएक्ट टुनाइट, कल सुबह बात करते. जो जेंजी होता है वो उसी रात को भिड़ जाता है, मतलब सब कुछ लेके, तो इसबगोल कूल्स इट डाउन फॉर अ टाइम. सो तो वी हैव टू बी स्मार्ट, बिकॉज़ फाइबर इज फॉर योर गट बैक्टीरिया, एंड गट बैक्टीरिया आर द फ्यूचर ऑफ हेल्थ.

जिस प्रकार से पूरी तरह से विपक्ष बेचैन है अपने हार और हताशा से, और आज हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, वो अपने हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जब वो तमिलनाडु और केरल में चुनाव जीतते हैं उस समय उनको इलेक्शन कमीशन की याद नहीं आती है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश में भाजपा को विजय मिलती है तो उसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे फोड़ते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं, राहुल गांधी जी हार से सीखने का प्रयास कीजिए, हताशा में है, पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है उसके एहसास से

विपक्ष के तमाम मनगढ़ंत आरोप तथ्यों के कसौटी पर बार बार ध्वस्त हुए हैं। चुनाव आयोग से लेकर देश की सर्वोच्च अदालतों तक इनके हर झूठ की हवा निकल चुकी है। जब इनके पास नीतियों और विजन का अभाव होता है तो ये अब देश में भ्रम और अराजकता फैलाने के नए नए प्रपंच रच रहे हैं। हम सब ने देखा है कुछ दिन पहले किस तरह एक मनगढ़ंत खबर को लेकर देश भर में बवाल मचाया गया। अब जब चुनाव आयोग के सभी सदस्यों ने इनके लगाए हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया तो अब ये नए सिरे से फिर से माहौल को खराब करने का प्रयास करने में लगे हुए हैं।

0: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहां तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहां पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
1: आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि कभी कोई विपक्ष का विधायक आपको शिकायत करे कोई भी काम की, और सरकार का मंत्री उस काम को देखने के लिए पहुंचता है और वो हमारे विपक्ष के विधायक को फोन करता है, एक बार नहीं 3 बार फोन करता है, 45 मिनट उसका वेट करता है। मैं जब वहां पर मौजूद था, मैं केवल अपने इंजीनियर के साथ था, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में FIR दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना है, इनको गाली गलौज करना है और हमारे काम में बाधा डालना है।

0: मैं कांग्रेसों से एक ही बात कहता हूं, जनता के बीच जाके मेहनत करो तो जनता का आशीर्वाद लो। इस तरह से जो लिफाफाबाजी करते हुए ठीक नहीं है। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कांग्रेस के लिए? कांग्रेसी भी बार बार कहते हैं कि हम लोग को डुबा देंगे, लेकिन खुल के नहीं बोलते और डुबा रहे हैं। तो एम्पायर तो राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी के।
1: देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के मर्यादा पर चोट पहुंचाए, और चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद है, और उस पर आक्षेप लगाना, और पूरे दुनिया आज भारत की तरफ देखती है, चुनाव प्रक्रिया की तरफ देखती है, चुनाव आयोग के कामयाबी की तरफ देखती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में मुद्दों का अभाव हो गया है।

0: I need to open a savings account.
1: अरे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोल लो.
0: स्मॉल बैंक
1: स्मॉल प्रिविलेज सेविंग्स अकाउंट गरिमा सेविंग्स अकाउंट मैक्सिमा बिजनेस एच करंट अकाउंट बिजनेस मैक्सिमा बिजनेस प्रिविलेज आरडीए देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट देम.
0: ओके
1: उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस.

0: जो चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में वो निष्पक्ष नहीं है, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये चुनाव मैच फिक्सिंग चुनाव है। मैच फिक्सिंग चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में। तो सब कानून जो पारित किया गया है, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वो गैर कानूनी है।
1: बिगेस्ट इश्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू वोट चोरी कैंपेन। लास्ट 18-19 मंथ्स इज कंटिन्यूसली प्रेजेंटिंग टू द नेशन विथ एविडेंस दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड। Election system of this country is rigged, whether it is EVM machine or it is voter list, both of them are compromised, both of them are making as a design for winning election to BJP.
2: अभी बातचीत शुरू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी हमारा जो संगठन सृजन का था वो लगभग फाइनल है, आज उसके ऊपर भी मीटिंग है, बहुत जल्दी संगठन को हम डिक्लेयर करेंगे। सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर सम्मान चाहते हैं, बराबर सीटें चाहते हैं। बाकी हम फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने वाली बात है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तैयारी 403 सीट पर चल रही है, रात दिन काम चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि गठबंधन जब होगा तो जहां से हमारे गठबंधन के सहयोगी चुनाव लड़ेंगे हमें उनको भी जितवाने में मदद करनी है।
3: उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन होना तय है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें लगता है कि इस समय नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, जो कि दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
4: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: ये वही कांग्रेस के नेता है जिस कांग्रेस ने अयोध्या में भगवान राम मंदिर का फैसला देरी से आए इस कारण देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में वकीलों की फौज खड़ी करने का दुष्कर्म किया था। भगवान को भी आप बांटोगे अमीर और गरीब में। तेलंगा के मुख्यमंत्री ने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी श्रद्धा और आस्था को आहत किया है।
1: The offensive remarks made by the Telangana chief minister, disrespecting our most revered deities, mirror the Hindu Virodhi Muslim League mindset of the top Congress leadership. These toxic statements also expose the Congress conspiracy to peddle a communal agenda, spreading hate and sowing divisions and fabricating a non-existent, fake, false, not south narrative.
2: जिस प्रकार से पूरी तरह से विपक्ष बेचैन है अपने हार और हताशा से, और आज हम देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या टीएमसी हो, वो अपने हार को पचा नहीं पा रहे हैं। जब वो तमिलनाडु और केरल में चुनाव जीतते हैं उस समय उनको इलेक्शन कमीशन की याद नहीं आती है, लेकिन जब पश्चिम बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश में भाजपा को विजय मिलती है तो उसका ठीकरा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे फोड़ते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ, राहुल गांधी जी, हार से सीखने का प्रयास कीजिए। हताशा में है, पर इस प्रकार से संवैधानिक संरचनाओं को सवाल उठाकर आप अपने ऊपर तो सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारत की जनता ने जो वोट दिया है उस वोट की चोट का दर्द आपको है, उसके एहसास से कुछ नई चीजों को सीखिए, नहीं तो आने वाले समय में जनता आपको इसी प्रकार का चोट देती रहेगी।
3: आटो हजरात और खवातीन, जरा मुआयदा फरमाए तो खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए, खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए, अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए। हजरात, यहाँ अपनी पर गौर फरमाया जाए। हाँ, तो अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए, और मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए, मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए, झिझकिए मत, खुद को बीबी का गुलाम कीजिए, और इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है। और फरमाइए, इसी से खत्म मतलब खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है यूसीसी पर तकरार, घर सुबह दोपहर शाम आई लव यू बोलकर करोगे मोहब्बत का इजहार। यूसीसी आई मीन आदावर जो है।
4: Co-powered by Air India, New Feels Good. Co-powered by Veka, India's largest selling UPVC window. Co-powered by Star Health Row, stress nahi.
5: Girnar, ek chai ho jaye.

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

मीडिया के सभी बंधुओं को ज्ञात होगा साल 2019 में निवर्तमान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि वो नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा कि उन पर कटाक्ष करें, उन पर हमला करें, लेकिन कांग्रेस का यह हमला संवैधानिक संस्थाओं पर और भारत के लोकतंत्र पर हमले में तब्दील ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने यह कहा कि चुनाव आयोग को प्रश्नों के दायरे में लाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का महिमामंडन उनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से हुआ।

0: पूरी कांग्रेस पार्टी और हमें लगता है कि पूरे देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें खड़ा होना पड़ेगा और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ इसमें इस लड़ाई में सब आगे बढ़ेंगे।
1: उनकी लाइन क्या थी आप लोगों के लिए?
0: अभी रेजोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, रेजोल्यूशन आएगा। और जो ये इस तरह से चल रहा है, ये वोट चोरी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस बात को उठाया और वो एक एक बात सच साबित हो रही है, ये कोई हमने नहीं निकाली, इलेक्शन कमीशन के बीच में से ये बातें निकल रही हैं जो कि इस बात को पुख्ता करती हैं कि ऑल इज नॉट वेल और हमारा लोकतंत्र खतरे में डाला जा रहा है।
1: रणनीति अब आगे की है?
0: आगे की रणनीति आपको पता चलेगी, सदन से सड़क तक।
1: कांग्रेस लड़ना चाहती है, क्या समूचा विपक्ष साथ देगी कांग्रेस का?
0: कल मीटिंग है, सब साथ देंगे, हर एक नागरिक साथ देगा क्योंकि लोकतंत्र की और हर भारतीय नागरिक के अधिकार का सवाल है।
2: पूरा बिहार राहुल गांधी शोर मचाते रह गए, एक व्यक्ति पीड़ित नहीं मिला, एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे अपने किसी तरह की दिक्कत है। राहुल गांधी हर बात को बतरंग बनाना और अफवाह फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। हम मेहनत से और विकास के भरोसे जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। राहुल गांधी झूठ और अफवाह फैला करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन झूठ और अफवाह की राजनीति कुछ घंटे तक ही टिकती है, बाकी कोई उसकी चिंता नहीं करता।
3: फॉर अस इन इंडिया इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इज द इशू ऑफ टेररिज्म, दैट वी फील दैट यू नो एज अ कंट्री परहैप्स देयर वेरी फ्यू कंट्रीज व्हिच हैव बीन सब्जेक्टेड टू द काइंड ऑफ टेररिज्म दैट वी हैव फ्रॉम अ नेबर एज पार्ट ऑफ अ डेलिबरेट conscious policy over many, many decades. Now, if something which matters so deeply to us, there isn't enough understanding or appreciation or empathy of that, I think that creates a problem too. One of my primary concerns is not fully appreciated by my partner, then clearly there is a impact of that on the relationship.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: एक्टिव सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यार लोन भूल गया मैरी
1: इट्स
0: जस्ट अ गुड बैंक ना
2: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
2: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
3: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
4: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

मीडिया के सभी बंधुओं को ज्ञात होगा साल 2019 में निवर्तमान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि वो नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने का भरसक प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार ये कहा कि उन पर कटाक्ष करें, उन पर हमला करें, लेकिन कांग्रेस का यह हमला संवैधानिक संस्थाओं पर और भारत के लोकतंत्र पर हमले में तब्दील ना हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा। आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने यह कहा कि चुनाव आयोग को प्रश्नों के दायरे में लाने के लिए उनके कार्यकर्ताओं का महिमामंडन उनकी व्यवस्थाओं के माध्यम से हुआ।

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन्ड कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: इट उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: यार लोन भूल गया मैरी इट्स जस्ट अ गुड बैंक ना
1: उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
0: स्मॉल फाइनेंस बैंक
1: स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन होम लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी माइक्रो मॉर्गेज लोन गोल्ड लोन प्री ओन कार लोन टू व्हीलर लोन
2: देयर इज नथिंग स्मॉल अबाउट
3: अस उज्जीवन नथिंग स्मॉल अबाउट अस

0: अभी बातचीत शुरू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी हमारा जो संगठन सृजन का था वो लगभग फाइनल है, आज उसके ऊपर भी मीटिंग है, बहुत जल्दी संगठन को हम डिक्लेयर करेंगे। सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर सम्मान चाहते हैं, बराबर सीटें चाहते हैं। बाकी हम फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने वाली बात है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तैयारी 403 सीट पे चल रही है, रात दिन काम चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि गठबंधन जब होगा तो जहां से हमारे गठबंधन के सहयोगी चुनाव लड़ेंगे हमें उनको भी जितवाने में मदद करनी है।
1: उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन होना तय है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें लगता है कि इस समय नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, जो कि दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
2: चुनाव आयोग की तरफ से इनको जरूरत क्या पड़ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, इसलिए है कि चुनाव आयोग पर ही इनको भरोसा है, जनता का भरोसा इनको नहीं है। इनको पता है जनता इनको पूरी तरह से नकार चुकी है, और 27 में जब चुनाव होगा 27 के चुनाव में पूरी तरह से इनका सफाया हो जाएगा। अब इनको भरोसा अगर किसी को है जिसके सहारे ये उपचुनाव जीते हैं तो वो सहारा केवल चुनाव आयोग का है, इसलिए चुनाव आयोग के पक्ष में ये

0: प्रेस कर रहे हैं।
1: बैठक है कैसे?
2: चलिए, वो अपनी तरह राजनीति करते रहे, परंतु देश के संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर लगातार प्रश्न उठाने का काम कांग्रेस का है, राहुल गांधी का है। वो आर्मी हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, निरंतर वह देश के संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न उठाते हैं और निराधार प्रश्न उठाते हैं।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: जो चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में वो निष्पक्ष नहीं है, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये चुनाव मैच फिक्सिंग चुनाव है। मैच फिक्सिंग चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में। तो सब कानून जो पारित किया गया है, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वो गैर कानूनी है।
1: बिगेस्ट इश्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू वोट चोरी कैंपेन। लास्ट 18-19 मंथ्स इज कंटिन्यूसली प्रेजेंटिंग टू द नेशन विथ एविडेंस दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड। इलेक्शन सिस्टम ऑफ दिस कंट्री इज रिग्ड, वेदर इट इज ईवीएम मशीन और इट इज वोटर लिस्ट, बोथ ऑफ दम आर कॉम्प्रोमाइज, बोथ ऑफ दम आर मेकिंग एस अ डिजाइन फॉर विनिंग इलेक्शन टू बीजेपी।
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी पांच पांच साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहां तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहां पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
1: आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि कभी कोई विपक्ष का विधायक आपको शिकायत करे कोई भी काम की, और सरकार का मंत्री उस काम को देखने के लिए पहुंचता है और वो हमारे विपक्ष के विधायक को फोन करता है, एक बार नहीं तीन बार फोन करता है, 45 मिनट उसका वेट करता है। मैं जब वहां पर मौजूद था, मैं केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में FIR दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं, हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना है, इनको गाली गलौज करना है और हमारे काम में बाधा डालना है।

0: पूरी कांग्रेस पार्टी और हमें लगता है कि पूरे देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए इसमें खड़ा होना पड़ेगा और हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के साथ इसमें इस लड़ाई में सब आगे बढ़ेंगे।
1: उनकी लाइन क्या थी आप लोगों के लिए?
0: अभी रेजोल्यूशन आपके पास आ जाएगा, रेजोल्यूशन आएगा। और जो ये इस तरह से चल रहा है, ये वोट चोरी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस बात को उठाया और वो एक एक बात सच साबित हो रही है, ये कोई हमने नहीं निकाली, इलेक्शन कमीशन के बीच में से ये बातें निकल रही हैं जो कि इस बात को पुख्ता करती हैं कि ऑल इज नॉट वेल और हमारा लोकतंत्र खतरे में डाला जा रहा है।
1: आगे की है,
0: आगे की रणनीति आपको पता चलेगी, सदन से सड़क तक।
1: कांग्रेस लड़ना चाहती है, क्या समूचा विपक्ष साथ देगी कांग्रेस का?
0: कल मीटिंग है, सब साथ देंगे, हर एक नागरिक साथ देगा क्योंकि लोकतंत्र की और हर भारतीय नागरिक के अधिकार का सवाल है।
2: पूरा बिहार राहुल गांधी शोर मचाते रह गए, एक व्यक्ति पीड़ित नहीं मिला, एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि मुझे अपने किसी तरह की दिक्कत है। राहुल गांधी हर बात को बतरंग बनाना और अफवाह फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। हम मेहनत से और विकास के भरोसे जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं। राहुल गांधी झूठ और अफवाह फैला करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन झूठ और अफवाह की राजनीति कुछ घंटे तक ही टिकती है, बाकी कोई उसकी चिंता नहीं करता।

0: जो चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में वो निष्पक्ष नहीं है, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये चुनाव मैच फिक्सिंग चुनाव है। मैच फिक्सिंग चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में। तो सब कानून जो पारित किया गया है, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वो गैर कानूनी है।
1: बिगेस्ट इश्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू वोट चोरी कैंपेन। लास्ट 18-19 months इज कंटिन्यूसली प्रेजेंटिंग टू द नेशन विद एविडेंस दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड। Election system of this country is rigged, whether it is EVM machine or it is voter list. Both of them are compromised. Both of them are making as a design for winning election to BJP.
2: अभी बातचीत शुरू हो जाएगी नेक्स्ट मंथ, क्योंकि अभी हमारा जो संगठन सृजन का था वो लगभग फाइनल है। आज उसके ऊपर भी मीटिंग है, बहुत जल्दी संगठन को हम डिक्लेयर करेंगे। सम्मानजनक हिस्सेदारी भागीदारी होगी, क्योंकि हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं और बराबर सम्मान चाहते हैं, बराबर सीटें चाहते हैं। बाकी हम फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने वाली बात है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी तैयारी 403 सीट पर चल रही है, रात दिन काम चल रहा है। और इसलिए चल रहा है कि गठबंधन जब होगा तो जहां से हमारे गठबंधन के सहयोगी चुनाव लड़ेंगे, हमें उनको भी जितवाने में मदद करनी है।
3: उत्तर प्रदेश के अंदर में इंडिया गठबंधन होना तय है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें लगता है कि इस समय नेताओं को बयानबाजी से बचना चाहिए, जो कि दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
4: सॉरी
5: आटो हजरातो खवातीन, जरा मुआइजा फरमाए तो खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए, खुशहाल फैमिली का नुस्खा जान लीजिए, अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए। हजरात यहाँ अपनी पर गौर फरमाया जाए हाँ, तो अपनी ही बेगम को दिल का संविधान मान लीजिए, और मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए, मैं जो करता हूँ वही आप भी काम कीजिए, झिझकिए मत, खुद को बीबी का गुलाम कीजिए, और इसी से खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है, और फरमाइए इसी से खत्म खत्म मतलब खत्म हो जाएगी ये जो भी चल रही है यूसीसी पर तकरार, अगर सुबह दोपहर शाम आई लव यू बोलकर करोगे मोहब्बत का इजहार यूसीसी आई मीन आधावर जो है।

0: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी पांच पांच साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहां तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहां पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने ये साहिब सिंह लड़का है इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
1: आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि कभी कोई विपक्ष का विधायक आपको शिकायत करे कोई भी काम की, और सरकार का मंत्री उस काम को देखने के लिए पहुंचता है और वो हमारे विपक्ष के विधायक को फोन करता है, एक बार नहीं तीन बार फोन करता है, 45 मिनट उसका वेट करता है। मैं जब वहां पर मौजूद था, मैं केवल अपने इंजीनियर के साथ थे, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में FIR दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना है, इनको गाली गलौज करना है और हमारे काम में बाधा डालना है।

0: जो चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में वो निष्पक्ष नहीं है, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये चुनाव मैच फिक्सिंग चुनाव है। मैच फिक्सिंग चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में। तो सब कानून जो पारित किया गया है, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वो गैर कानूनी है।
1: बिगेस्ट इश्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू वोट चोरी कैंपेन। लास्ट 18-19 मंथ्स इज कंटिन्यूसली प्रेजेंटिंग टू द नेशन विथ एविडेंस दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड। Election system of this country is rigged, whether it is EVM machine or it is voter list, both of them are compromised, both of them are making as a design for winning election to BJP.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: जो चुनाव हो रहे हैं हमारे देश में वो निष्पक्ष नहीं है, उसमें पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये चुनाव मैच फिक्सिंग चुनाव है। मैच फिक्सिंग चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में। तो सब कानून जो पारित किया गया है, जो अधिनियम बनाए गए हैं, वो गैर कानूनी है।
1: बिगेस्ट इश्यू ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू वोट चोरी कैंपेन। लास्ट 18-19 मंथ्स इज कंटिन्यूसली प्रेजेंटिंग टू द नेशन विथ एविडेंस दैट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड। Election system of this country is rigged, whether it is EVM machine or it is voter list, both of them are compromised, both of them are making as a design for winning election to BJP.
2: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.

0: आम आदमी पार्टी के टाइम में जो सड़कें बनती थी 5-5 साल उनकी गारंटी होती थी, तो जाहिर तौर पे इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। पैसा कहां तक गया इसकी छानबीन होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा दुख की बात यह है कि कल जब मंत्री जी यहां पे सड़क का मुआयना करने आए, उनके सामने जब लोगों ने सड़क दिखाई तो उन्होंने, ये साहिब सिंह लड़का है, इसको खींच के थप्पड़ मारा। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे पिताजी का देश नहीं है ये, इस तरह से तुम सरेआम लोगों को थप्पड़ नहीं मार सकते।
1: आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि कभी कोई विपक्ष का विधायक आपको शिकायत करे कोई भी काम की, और सरकार का मंत्री उस काम को देखने के लिए पहुंचता है और वो हमारे विपक्ष के विधायक को फोन करता है, एक बार नहीं 3 बार फोन करता है, 45 मिनट उसका वेट करता है। मैं जब वहां पर मौजूद था, मैं केवल अपने इंजीनियर के साथ था, मगर ये वहां पर आता है अपने गुंडों के साथ, ये वहां पर आता है अपने सारे ऐसे गुंडों के साथ में जिनके ऊपर में FIR दर्ज है, जिनको दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, और ये वहां पर आके गाली गलौज करते हैं, वहां पे बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपना काम दिखाते, पूरा सेटिस्फाई करते, मगर ये इनकी आदत है कि इनको ड्रामाबाजी करना है, इनको गाली गलौज करना है और हमारे काम में बाधा डालना है।